0: लवली बॉसेस, लवली बॉसेस,
1: धरती का प्यार पले।
0: सी वाला दम आई जस्ट प्ले।
1: आते ही सुबह है ऐसे ही
0: किंग आ किंग्स इन ट्रिनिडाद एंड टोबैगो एंड कमिंग टू बॉलीवुड।